मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत चिंता काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाद।

कुंचर स्थूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जाबुद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते

ऐं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सजंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक वार ते आए हैं ताके काल निकट ने आए है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्रायं तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक में हर हो।

हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जा।

0: सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं।
1: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: And that's the news from around the world on East FM.
1: We're deep in the groove now. Retro feels blending perfectly with today's hottest hits. This is Retro to Right Now with Niloufar.
2: Alright, चलो कोई तो मेरा नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा है. होता है आपके साथ जब आपके नाम की लोग कर देते हैं. मेरे साथ अक्सर होता है. Niloufar, Niloufar, Nilifi, I don't know what not. It's okay. Starting off with Jasleen Royal and B Proc. I've got Ranja from Shersha coming up next. This is East FM Kenya's premier Asian mix.

0: This is Retro to Right Now with Niloufar on East FM, Kenya's premier Asian mix. A very good afternoon. If you just tuned in, then this is the show you must be tuning in and enjoying, because we have such a great mix of the 90s, 2000s, some pop songs and some latest tunes.
1: Bollywood and beyond.
0: और साथ साथ आपको मिलता है बॉलीवुड का डोस भी. ओके, आई हैव गॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विद यू. सो फाइनली देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेक्युलेशन ऑन संजय लीला बंसालीज बायोपिक ऑन मधुबाला. या सो मेनी एक्ट्रेसेस वर लाइक इन द टॉक्स विद संजय लीला बंसाली होल प्ले मधुबाला. यू नो, टाइम एंड अगेन माधुरी इज ऑलवेज बीन कंपेयर्ड विद मधुबाला, दैट शी इज गॉट हर स्माइल एंड हर फीचर्स एंड हर ब्यूटी. ऑब्वियसली नाउ आई फील संजय लीला बंसाली विल फाइंड माधुरी अ लिटिल इन द ओल्डर एज ब्रैकेट टू कास्ट हर फॉर अ फिल्म इन अ मेन लीड. होता है, सबका वक्त होता है, राइट? सो ही वॉज लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस, समबडी न्यू, एंड देर वर सो मेनी एक्ट्रेस he was considering. सब की बात चल रही थी, ये है वो है, ये हीरोइन वो हीरोइन, दिशा पटानी, आई डोंट नो हु व्हाट नॉट. फाइनली द न्यूज इज आउट एंड द फिल्म इज गोइंग टू स्टार्ट बिगिनिंग टू शूट इन सेप्टेम्बर. दैट इज सारा अर्जुन, द एक्ट्रेस फ्रॉम धुरंधर, शी इज बीन कास्टेड एज मधुबाला इन संजय लीला बंसालीज अपकमिंग बायोपिक, जिसकी शूटिंग एक्सपेक्टेड है टू स्टार्ट इन सेप्टेम्बर. वॉट डू यू थिंक डू यू थिंक सारा अर्जुन विल डू जस्टिस टू मधुबाला ऑन स्क्रीन? ये सारा Arjun is very young, very pretty, very talented, but again Madhubala, you know, is an icon. I mean, she was a legend.

चलो ठीक से वापस दिमाग दौड़ाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और मुझे बताओ कि कौन सा सही है. आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड. ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ वुमन्स ब्रेन, यू नो, इज बिगर देन अ वुमन्स ब्रेन इज बिगर देन मैन्स ब्रेन बाय वॉल्यूम. इज दैट ट्रू और बकवास? सेकेंड वन, बॉयज आर बॉर्न विद मोर फैट सेल्स देन गर्ल्स. इज दैट ट्रू और बकवास? एंड थर्ड वन, टू मच ऑक्सीजन इज हार्मलेस. इज दैट ट्रू और बकवास? Oh.

0: That's playing for News to Film, Kinnis from Asian Mix. This is The City Lights with Vishal. और आज सोशल मीडिया पे एक ही बात चल रही है. एंड कहीं भी स्क्रॉल करोगे, कोई भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे स्क्रॉल करोगे, जस्ट वन थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड दैट इज द मूवी टॉक्सिक. एंड दैट द मूवी इज गोना रिलीज टुमारो 26 तारीख को. 26 ऑफ ऑगस्ट इज व्हेन द मूवी इज रिलीजिंग. एंड एवरीबडी एक्चुअली स्पेशली फैंस ऑफ रॉकिंग स्टार यश, क्योंकि ये उनकी पहली मूवी है आफ्टर KGF चैप्टर 2. So everywhere there is only two words that you can hear on watch on social media and hear people speak about in videos, and that is none other than Rocky Bhai. That was Yash's character's name in the movie KGF chapter 1 and 2. And obviously ye movie it's a multi star cast. We've got Nayanthara, we've got Tara Sutaria, we've got Kiara Advani and Rukmini Vasant and also Yash. So मैं पर्सनली आई एम नॉट गोना sugarcoat दिस, बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ. सीधी सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है. आई एम अ यश फैन सिंस आई saw KGF चैप्टर 1. उनकी पुरानी मूवीज़ मैंने इतने नहीं देखी, बट सिंस चैप्टर 1, KGF चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, आई हैव बिकम अ फैन. एंड हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, आई थिंक वॉज अ वीक और टू वीक्स बैक, एंड ही गिव एन इंटरव्यू on a very famous show, and everybody including the host of that show was absolutely mesmerized by the charisma this man holds. And with that, ek bhi sahi jawab nahi aaya hai. No one has given me the correct answer for the Mixer Beat challenge. These are the two songs I am looking for today. One more time. So which are these two songs that I am looking for today? In case you know the correct answer, you can know what to do. You can send me a message or a voice note on 0701-106-106. And aapko suraag dete hain, ek clue de dete hain. Both these songs are starring Nora Fatehi. Dance numbers hain, starring Nora Fatehi.
1: East FM. Kenya's premier Asian mix.

0: Well, hello and once again, welcome back to the second hour of the show, जहाँ पे of course I've got your translate challenge that is coming up shortly. And इसी के साथ ही हम बात कर रहे थे about this movie that is going to release tomorrow and it's called Toxic. Ensemble cast है and बहुत बड़ी cast है and you know recently इसका music launch हुआ, then obviously we had the trailer launch a few weeks ago and I think there are promotional events happening. Yesterday, एक promotional event हुआ था in Chennai, then before that in Hyderabad. So, एक मैं जो बात कर रहा था about Yash and he was at an interview and वो एक बहुत ही popular show है. I think सालों साल हो गए, more than close to 2 decades, I think 20 साल कम से कम हो ही गए होंगे. And that is आपकी अदालत, which is hosted by the Mr. Rajat Sharma, and itne saalon se ye chalta aa raha hai program and everybody obviously loves it. So he mentioned one thing that stayed with me in that interview where he said that, you know what, kuch obviously adalat hai, allegations lagte hain ki aisa bola, aapne aisa kiya aur humko ye sunne ko aaya hai, and rumor has it, stuff like that. So, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस ने यश के बारे में एक कॉमेंट दिया था एंड यश's रिस्पॉन्स वॉज वेरी सिंपल दैट यू नो वॉट, यू कैन नॉट जज मी बेस्ड ऑन वॉट पीपल टेल यू. इफ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट मी, कम एंड आस्क मी एंड आई विल टेल यू वॉट द ट्रूथ इज. एंड अक्सर यही होता है, सब लोग जज कर लेते हैं कि हाँ यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, ये बंदे ने ऐसे किया है, वैसे किया है. एंड आई थिंक जजिंग इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू डू एंड नहीं करना चाहिए. अगर कोई आपको तकलीफ है किसी के साथ, आजकल यंत्र बहुत आगे हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेज वी कैन स्पीक टू पीपल. व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन चैनल्स है. एंड सिंपली गो टू समवनस हाउस, बात कर लोगे, हाँ भाई साहब ऐसा ऐसा है, लेट्स क्लियर इट आउट. लेकिन क्यों किसी को जज करना, एंड हु आर वी टू जज समवन, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है, उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं. सो आई थिंक लेट्स नॉट जज एनीबडी एंड आई थिंक इफ़ वी कैन ऑल कम टुगेदर एंड लिव इन हार्मनी, वी कैन ऑल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस.
1: All the favorite songs you grew up listening to. And the premier mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: इना मार मार करता आदम होया सब आखण इयो चोर है मच गई
1: दुहाई।
2: East FM, Kenya's premier Asian mix.